0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य उक्तवान् यत् अंतरिक्ष क्षेत्रस्य नवोद्यमाः प्रशासने स्वविश्वासं प्रकटितवन्तः। अंतरिक्ष क्षेत्रस्य नवोद्यम संस्थानां मुख्य कार्यकारी अधिकारिभिः सह संवादावधौ श्रीमोदी तान् स्वप्रयत्नेषु निरन्तरतां रक्षितुम् अथ विश्वस्य सर्वेभ्यः भागेभ्यः च प्रतिभाः आकर्षितुं समर्थं सुदृढं अंतरिक्ष क्षेत्रीयं पारितन्त्रं निर्मातुं प्रेरितवान्। असौ उक्तवान् यत् देशे अनुकूलं वातावरणं निर्मातव्यं यत्र विश्वस्य सर्वेभ्यः भागेभ्यः जनाः अन्तरिक्षक्षेत्रे स्ववृत्तिं भविष्यं च निर्मातुं भारतं प्राथमिकतया गन्तव्यस्थानम् इति पश्येयुः।
1: दुनिया भारतीय स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: श्री मोदी उक्तवान् यत् व्ययस्य दृष्ट्या भारतम् अत्यन्तं प्रतिस्पर्धाक्षमम् अस्ति अथ च अत्र गुणवत्तापूर्णाः प्रतिभाः सन्ति यासु संकटस्वीकरणस्य दृढा क्षमता वर्तते। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् एतयोः विशेषतयोः संयोगेन भारतं वैश्विके अन्तरिक्षक्षेत्रे शीघ्रमेव श्रेष्ठस्थानं स्थापयितुं समर्थमस्ति।
1: एक नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, बदलाव न करें, ताकि कोई भी रिस्क लेना चाहता है तो उसको भरोसा रहे और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है। दुनिया भारतीय स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। कॉस्ट में हम कॉम्पिटिटिव है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज्यादा होती है और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं।
0: संवादावधौ भारतस्य स्काईरूट एयरोस्पेस इत्यस्य संस्थानस्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चंदना अंतरिक्ष क्षेत्रम निज क्षेत्र उद्घाटनाय प्रधानमंत्रिणं मोदिनं प्रति आभारं प्रकटितवान्। ब्रिक्स क्रीडा संयुक्त घोषणा सर्वसम्मत्या स्वीकृत्य आंध्र प्रदेशस्य विशाखापत्तनम नगरे ब्रिक्स क्रीडा मंत्रिणां सभा समाप्ता। घोषणापत्रे ब्रिक्स देशानां क्रीडा विषये संवादस्य परस्पर सम्मानस्य समावेशनस्य च माध्यमेन सहकारं सुदृढं कर्तुं प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितम्। भारतस्य ब्रिक्स अध्यक्षतायां 26,000+ वर्षे आयोजितायाम् अस्यां सभायां क्रीडामन्त्रिणः सदस्य राष्ट्राणां वरिष्ठ प्रतिनिधयः च मिलित्वा क्रीडा विकासं युवसहभागित्वम् अन्ताराष्ट्रिय सहयोगं च प्रोत्साहनाय उपायान् चर्चितवन्तः। केन्द्रीय युव कार्य क्रीडा मंत्री डॉ मनसुख मांडविया स्वस्य प्रारंभिक भाषणे व्यावहारिक निरंतर सहकार्येण सुदृढ ब्रिक्स क्रीडा सहभागितस्याः निर्माणाय आह्वानम् अकरोत्। सह क्रीडकानां प्रशिक्षकानां च आदान प्रदानं संयुक्त स्पर्धाः क्रीडा विज्ञानस्य अथ तंत्रज्ञानस्य च आदान प्रदानं प्रस्तावितवान्। डॉक्टर मांडविया अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे भारतं स्वस्य क्रीडा पर्यावरण व्यवस्थां परिवर्तयन् अस्ति एवञ्च क्रीडांगणात् मञ्च पर्यन्तं अवसरान् कल्पयति। सः पैरा स्पोर्ट्स इत्यस्य प्रोत्साहनाय क्रीडासु महिलानां सहभागित्वं वर्धयितुं च भारतस्य प्रयत्नान् अपि प्रतिपादितवान्। राष्ट्रियांतरिक्ष दिवसावसरे केन्द्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह चंद्रयान तृतीयस्य ऐतिहासिक सफलतायाः स्मरणं कृतवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे डॉ जितेन्द्र सिंह 23,000+ वर्षस्य अगस्त मासस्य 23 दिनांके घटितं तत् ऐतिहासिकं क्षणं स्मृतवान् यदा चंद्रयान तृतीयं सफलतया चंद्रस्य दक्षिण ध्रुवीय प्रदेशे अवतरितम्। सः उक्तवान् यत् अनया उपलब्धिना भारतं विश्वस्य प्रमुखान्तरिक्ष देशेषु स्थानं प्राप्तवान्। सः भारतीय वैज्ञानिकानां योगदानस्य प्रशंसामपि अकरोत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर

0: चल दूरभाषीय तंत्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन अथ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च राष्ट्रियान्तरिक्ष दिवसावसरे देशवासिभ्यः शुभकामनाः प्रदत्तवन्तौ। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे श्रीराधाकृष्णन उक्तवान् यत् अन्तरिक्षान्वेषण क्षेत्रे भारतस्य विशिष्टोपलब्धयः देशस्य वैज्ञानिक श्रेष्ठतायाः नवोन्मेष भावनायाः एवं ज्ञानस्य सीमाः च अग्रे नेतुं दृढ संकल्पस्य प्रमाणं सन्ति। असौ देशस्य वैज्ञानिकान् अभियन्त्रीन् तथा नवोन्मेषकान् नत्वा उक्तवान् यत् तेषां समर्पणं राष्ट्रं निरन्तरं नूतनासु उन्नतिषु नयति। असौ देशस्य गगनयानं सदृशानां महत्वाकांक्षी अभियानानाम् अपि उल्लेखं कृतवान्। तदनन्तरं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सामाजिक संचार पटले एकं दृश्य श्रव्य सन्देशं प्रकाश्य उक्तवान् यत् नूतन वैश्विक व्यवस्थायां भारतं स्वस्य अन्तरिक्ष क्षेत्रस्य निरन्तरं विस्तारं करोति। श्रीमोदी उक्तवान् यत् अद्य जेन्जी इति नव युव वर्ग सम्बद्धाः अभियन्तारः रूपाङ्कनकाराः सङ्गणक कार्यक्रम लेखकाः अथ वैज्ञानिकाः च नव प्रौद्योगिकीनां निर्माणं कुर्वन्ति।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: ईरान देशस्य सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदः सचिवः मोहसेन रेजाई इत्याख्यः सीमावर्ती देशान् तेहरान नगरस्य विरुद्धं अमेरिका देशेन संचाल्यमाने आर्थिक अभियाने भागं न ग्रहीतुं सञ्चेतनाम् अयच्छत्। सः अवदत् यत् एतादृशे अभियाने सहभागिता कुर्वन् चेत् ईरान देशः तान् देशान् शत्रुरूपेण मन्येत। आईआरआईबी संस्थायै दत्ते साक्षात्कारे रेजाई वर्यः अवदत् यत् ईरान देशः वृद्धिं नेच्छति, किन्तु यदि समीपवर्ति देशाः वाशिंगटनस्य आर्थिक भारोपायानां समर्थनं कुर्वन्ति तर्हि तेहरानः प्रतिकारात्मकं कार्यं करिष्यति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य युद्धपोतानां समुद्रीययानानां तथा अन्य सम्बद्ध क्षेत्राणां निर्माणे आत्मनिर्भरतायाः आवश्यकता सबलं प्रतिपादितवान्। सः देशस्य सुरक्षायै आत्मनिर्भरताम् अत्यन्तं महत्वपूर्णां प्रतिपादितवान्। भारतं भविष्यस्य पोतनिर्माणकेन्द्रं कर्तुम् अस्मिन् क्षेत्रे उच्चगुणवत्तायुक्तानाम् अनुरक्षणसेवानाम् आवश्यकता अस्तीति सः प्रतिपादितवान्। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य छत्तीसगढ़ ओडिशा तटीय आंध्र प्रदेशानां पृथक पृथक स्थानेषु अतिवृष्टि नारंग वर्ण परा पूर्व संचेतना प्रदत्ता अस्ति। आईएमडी इत्यनेन अद्य अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय तटीय कर्नाटक पूर्वी उत्तर प्रदेश गांगेय पश्चिम बंगाल झारखण्डानां पृथक पृथक स्थानेषु प्रचंड वृष्टि भविष्यति इति पूर्वानुमानं प्रकटितम्। एफआईएच हॉकी विश्व चषक क्रीडायां भारतीय महिला दलं अद्य रात्रौ ऑस्ट्रेलिया दलं सम्मुखी करिष्यति। वार्ताः।
2: അല്പസമയത്തിനകം പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ കേൾക്കാം.